0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: सुप्रभात, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम नॉनस्टॉप गपशप। और ऐसा है कि रहूंगी आपके साथ सुबह के 11 बजे तक। और हमारा जो सफर है उसमें एक विषय तो जरूर होता है ताकि हम उस पर नॉनस्टॉप बातचीत भी तो कर सकें, गाने तो सुनेंगे ही आप। वैसे मैं बता दूं कि आज जो विषय है ना काफी मसालेदार है, काफी स्पाइसी है। और कहते हैं कि जब मौसम बारिश का हो तो उसमें कुछ मसालेदार होना चाहिए, कुछ स्पाइसी होना चाहिए, चाहे वो लाइफ में हो चाहे वो खाने में हो। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि भारत में अपने समृद्ध स्वाद और सुगंध के लिए कई तरह के मसालों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, हाँ माफ कीजिए इलायची में भी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी है, तेजपत्ता है, सरसों है, मेथी दाना है, सौंफ है, अजवाइन है, हींग है, जावित्री है, सौंठ, लहसुन यानी कि ड्राई जिंजर है, गार्लिक है, अदरक है, लहसुन है, कड़ी पत्ता, कलौंजी है, तिल है और स्टार अनीस एक वो भी एक तरह का मसाला है, चक्रफूल है, अनारदाना भी है, शाही जीरा है, पोस्तो दाना है। अब जब इतने सारे मसालों का नाम मैंने बताया है तो क्यों ना गरम मसाला फिल्म से आपको सुनवाऊं सोनू निगम की आवाज में ये गाना।

ऐसा है दोस्तों कि मसालों के बारे में आप भी सोच रहे हैं ना, और कहीं ना कहीं सारे मसालों में अपनी एक खुशबू भी होती है, उसकी अलग अलग तासीर भी होती है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि हमारा जो भोजन है वो मसालों के बिना जो है ना मज़ा नहीं है, और वैसे ही जिंदगी में भी मसाले की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा है दोस्तों कि भारतीय रसोई के मसाले और इंसानों का स्वभाव सदियों से आयुर्वेदिक और ज्योतिषी गुण से जुड़े रहे हैं, और जिस तरह हर मसाले का अपना एक अलग प्रभाव, गर्म, ठंडा और स्वाद होता है, उसी तरह इंसान के व्यक्तित्व का भी अपनी एक खासियत होती है। अब जैसे बात करूं लाल मिर्च और काली मिर्च की, तो ये जो है ना अग्नि पित्त स्वभाव के हैं, और ये मसाले तीखे, तेज और गर्म तासीर वाले होते हैं। व्यक्तित्व से मेल की बात करें तो जो लोग बहुत साहसी, ऊर्जावान, स्पष्टवादी और क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उनका व्यक्तित्व मिर्च जैसा होता है। क्यों, आप क्या कहेंगे, मानेंगे तो इस बात को? तो चलिए सुनवाती हूं आपको ये गीत, हाय हाय मिर्ची।

ऐसा है दोस्तों कि आज के कार्यक्रम में जब आप आएंगे बातें करने के लिए, तो जिस विषय पे आप बात करेंगे वो होगा कि जैसे मसाले जो हैं, इंडियन स्पाइसेस जो हैं, सभी स्पाइसेस की अलग तासीर है, अलग खुशबू है और अलग यूटिलिटी है उसकी। तो मतलब आप बताएंगे कि आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपका स्वभाव और नेचर किस मसाले से रिलेट करता है। तो बात तो समझ आ ही गई होगी और भीतर ही भीतर बड़े बड़े, मतलब क्या बताऊं कि मतलब मज़े भी आ रहे होंगे कि चलो आज मैं ये कहूंगा या वो कहूंगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आगे मैं बढ़ती हूं और आपको बता दूं कि हल्दी

स्वभाव से अगर कहा जाए तो हल्दी में औषधीय गुण है, पवित्रता और हीलिंग की क्षमता है। व्यक्तित्व से मेल की बात अगर करें तो शांत, सकारात्मक और मददगार स्वभाव के लोग हल्दी जैसे होते हैं। वे लोग को जोड़ने वाले, बुद्धिमान और हर परिस्थिति में ढल जाने वाले होते हैं। बात करूं इलायची और सौंफ की तो स्वभाव से इनकी तासीर ठंडी और सुगंध मीठी होती है। व्यक्तित्व से मेल की बात करूं तो सौम्य, मिलनसार, मृदुभाषी और तनाव मुक्त रहने वाले लोगों का स्वभाव इलायची जैसा होता है। वे अपनी मीठी बोल से माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। अदरक की बात करूं तो एनर्जाइजर है, ये तीखा पाचक स्फूर्ति देने वाला मसाला है। व्यक्तित्व से मेल की बात करूं तो जो लोग रचनात्मक, क्रिएटिव, उद्यमी और हमेशा नया करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनका व्यक्तित्व अदरक के समान होता है। अजी मैं क्या बताऊं, अदरक के बाद से मुझे याद आई तनु वेड्स मनु में एक डायलॉग है जो कंगना रनावत कहती है माधवन से कि ये आदमी देखो कहीं से भी बढ़े जा रहा है अदरक की तरह। लेकिन अगला गाना अदरक पे नहीं है, अगला गाना जो है वो कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है और इस गीत को मैंने लिया है फिल्म कूली नंबर वन से। समीर ने कलमबद्ध किया है और आनंद मिलन ने संगीतबद्ध किया है। मैं तो रस्ते से जा रहा था।

0: ऐसा है कि मतलब खाते वक्त ये ध्यान देना पड़ता है कि इतना भी मसालेदार ना करे कि तबीयत पे जो है बन पड़े, और क्या है कि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मसालों का इस्तेमाल करे, वैसे ही अपने स्वभाव में भी जो है ना इतनी मिठास लाए ताकि सामने वाले को मिर्ची ना लगे। और फिलहाल देखते हैं हमारे टेलीफोन लाइन पे कोई कॉल फ्रेंड हाजिर है तो कौन है, कहाँ से है। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार, मैं किससे बात कर रही हूँ?
1: जी मेरा नाम दीपा है और मैं चंडीगढ़ से बोल
0: चंडीगढ़ से आपने डायल किया है 2243-7912। चलिए बहुत अच्छी बात है, चंडीगढ़ से दीपा आप जुड़ी हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में, जिसे आप सुनते हैं 107 एफएम रेनबो पर, जो कनेक्ट करता है हार्ट टू हार्ट यानी दिल से दिल तक का हमारा कनेक्शन होता है। तो ऐसा है दीपा, पहले ये बताओ कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मतलब इंडियन स्पाइसेस जो है ना वाकई में मतलब जादू है उनमें, नशा है उनमें, मैजिक है उनमें, तो अगर मैं पूछूं कि आप खुद को किस मसाले से रिलेट करती हैं तो जवाब क्या होगा?
1: ओके थैंक यू मैम। फर्स्ट आई वुड से कि मैं किसी सिंगल स्पाइस
0: सिंगल स्पाइस से रिलेट नहीं कर सकते, तो बताओ बताओ, मजा तो यही है ना। इलायची मतलब खुशबू भी है और मतलब शीतलता भी है, मिठास भी है ना। और बताओ, अदरक जैसी हूँ हाँ, लेकिन अदरक में भी बहुत एनर्जी होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ये बताओ दीपा, करती क्या हो तुम?
1: तो मैं अपने प्रोफेशन को भी इससे रिलेट कर सकती हूँ, जैसे इलायची में क्या है थोड़ा सा अरोमा में मीनिंगफुल चीज बना देती है वाटर, पेशेंट के लाइफ में विजन आ जाती है, मतलब मीनिंगफुल बन जाती है उस लाइफ।
0: आप ऑप्टिमिस्ट हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं ना। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप कार्यक्रम में शामिल हुई, और क्या है कि नजरें अगर तेज हो तो मसालों को देखने में भी आसानी होती है, और क्या है कि मैं तो यही कहूंगी कि सारे मसालों का आनंद उठाना चाहिए और लाइफ है, लाइफ को बड़ा स्पाइसी बनाना चाहिए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जुड़ने के लिए चंडीगढ़ से कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में, बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही समय मिले तो बिल्कुल जुड़ा कीजिएगा।
1: ठीक है, थैंक यू मैम।

ऐसा है दोस्तों की स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 10:29 और फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंडियन स्पाइसेस को लेकर और ह्यूमन नेचर को जोड़कर। और मेरा सवाल आपसे यही है कि आप खुद को किस स्पाइस से, किस इंडियन स्पाइस से, किस मसाले से अपने आप को जो है रिलेट कर पाते हो, कर सकते हो और करना चाहते हो। तो बात अगर करूं मैं जीरा धनिया की, तो ये दोनों ही बड़े हार्मोनियस हैं और ये पाचन को ठीक करते हैं और संतुलन बनाते हैं। और किसी व्यक्तित्व से मेल खाने की अगर बात हो तो व्यवहारिक, शांत और समझदार लोगों का स्वभाव जीरे जैसा होता है। वो घर और कार्यस्थल पर शांति और तालमेल बनाए रखने में माहिर होते हैं। और क्या मतलब, आयुर्वेद और ज्योतिष के संबंध में अगर बात करूं तो आयुर्वेद के अनुसार हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन त्रिदोष वात पित्त कफ पर निर्भर करता है। और अगर आप अपनी प्रकृति के अनुसार सही मसाले का चयन करते हैं तो आपका स्वभाव और स्वास्थ्य बेहतर रहता है। और फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए कौन सा, अजी कौन सा सुनाती हूं ना, परेशान क्यों हो रहे हैं। चलिए मैं अगला गाना आपको सुनाती हूं, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में।

0: बिल्कुल कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तब, बहुत कुछ होता है जब आप अपने अपनों से मिलते हैं तब। क्योंकि अगर आप सभी बड़े खुश मिजाज होते हैं, बड़े मतलब दिल से बड़े जुड़ने वाले होते हैं जैसे कि हमारा 107 है, तो फिर चार चांद लग जाते हैं जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, तो उसकी खुशी और होती है। अब ऐसा भी होता है कुछ लोग जब मिलते हैं ना तो मिर्ची वाली बात दिमाग में आ जाती है और आदमी कहता है अब क्या करे, पानी पानी पानी। तो चलिए फिलहाल देखते हैं कि हमारे टेलीफोन लाइन पे हमारे कौन से कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: छत्तीसगढ़ से योगेश जी, चलिए बहुत पहले आप आते थे, बीच में शायद आप आना बंद कर दिए, कोई बात नहीं, आज जब आप जुड़े हैं तो ये जो कंटिन्यूटी है बनाए रखिएगा, जुड़ने वाली जो है बात, क्योंकि हम विश्वास करते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में। और बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी आपका कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। और ये बताइए कि अगर मतलब मसालों की बात करें तो हर एक मसाला की अलग अलग तासीर है, स्वाद है, अरोमा है। अब आपके स्वभाव से, आपके नेचर से कौन से मसाले को आप रिलेट करेंगे?
1: वैसे तो सभी मसाले उपयुक्त रहते हैं, जरूरी रहते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है वो धनिया काफी स्पेशल है।
0: काफी स्पेशल है आपके लिए, है ना? आपको लगता है कि आपका स्वभाव, आपका नेचर धनिया से मेल खाता है ना?
1: हाँ जी, क्योंकि वो उनका खुशबू इस तरह से होता है कि वो अगर एक बार कोई अपने हाथ में लगा ले तो फिर वो महकता रहता है
0: और ठंडी तासीर भी है ना?
1: बिल्कुल।
0: और ग्रेवी बनाने में भी काफी काम आता है, कहते हैं कि धनिया पीस के डालो, बड़ा रसदार होगा, है ना?
1: जी।
0: और अचार बनाते हैं उसमें भी पड़ता है, यानी कि कह सकते हैं कि हाँ, धनिया बड़ा कूल वाला इंसान होता है जो हर जगह फिट हो जाता है, राइट? चलिए योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े छत्तीसगढ़ से, और यूं ही समय मिले तो जरूर जुड़िएगा कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: तो ऐसा है दोस्तों कि आप भी आइए ना और बताइए कि आप अपने आप को किस मसाले से जो है कनेक्टेड फील करते हैं, रिलेटेड फील करते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुंबई से फोन किया था एम वेंकट रमन ने और बहुत बिजी थे इसीलिए उन्हें डिस्कनेक्ट करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर किसी मसाले से खुद को रिलेट करना चाहूंगा तो वो होगी हल्दी। मैंने पूछा कि हल्दी में भी कौन सी हल्दी, कच्ची हल्दी या फिर वो गांठ वाली हल्दी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद को कच्ची हल्दी से रिलेट कर पाता हूं। तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और आगे अरविंद गिरी ने जो फोन करके बताया बैंगलोर से, वो भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको सुनवाती हूं फिल्म हमसे है मुकाबला से ये गीत।

0: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 10:44 और फिलहाल हमारे कोई कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं, तो लेट्स चेक आउट कौन है। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही है?
1: मैं अनुराधा नाग बोल रही हूँ।
0: अनुराधा नाग, सबसे पहले अनुराधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में।
1: जी शुक्रिया।
0: हाँ
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा टॉपिक लाने के लिए।
0: चलिए
1: पहला एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगी मसाले के बारे में।
0: हाँ बताइए बताइए।
1: मसाला जो है ये एक्चुअली में जब अरब कंट्री के लोग हमारे यहाँ से मसाला पूरे यूरोप में जब इसको बेचते थे उन्होंने इसको नाम मसाला दिया है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: ये जो हम लोग जो जीरा धनिया ये सब जो यूज करते हैं ना, हमारे आयुर्वेदिक में लेकिन लिखा हुआ है जीरा औषधि, धनिया औषधि, कहीं भी मसाला के रूप में नहीं लिखा हुआ है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये औषधि के रूप में ही इसको चिन्हित किया गया है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए अनुराधा जी मैंने शुरू में ही कहा था कि जितने भी स्पाइसेस हैं उसका जो है आयुर्वेद में भी जिक्र है, और अगर आप कहें तो जितने भी मसाले हैं वो सब में कोई ना कोई मेडिसिनल यूटिलिटी है, वैल्यू है उसका।
1: डेली यूज में अगर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें, जैसे सिंपल वे में हम लोग ये जो चाय पीते हैं, हमारे यहाँ पे चाय इतने आम है, इवन आपके हमारे यहाँ रेनबो में भी चाय एंड क्लासिक आप लोग बनाते हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, 5:15 से FM गोल्ड पर।

0: लेकिन हाँ, लेकिन ये चाय हमारे लिए जो जहाँ पे जो चीज जहाँ पैदावार होती है वहाँ के पीपल के लिए, वहाँ के लिए उसी के उस समय आप अगर वहाँ रहो तो वो आपके लिए फायदे,
1: ज्योग्राफिकल फैक्टर के हिसाब से सेवन करना चाहिए चीजों का।
0: तो चाय हमारे यहाँ के लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, वो प्रेशर को बढ़ाता है।
1: चलिए ये सारी बातें तो आपने बताई, पहले ये बताइए अनुराधा जी कि खुद को आप किस मसाले से रिलेट करते हो?
0: जी अगर मैं देखूँ तो अदरक, काली मिर्च, क्योंकि मैं थोड़ा सच बोलती हूँ और बहुत खराब बोलती हूँ, तो मतलब
1: तो बहुत अच्छी बात है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
0: नहीं मेरे दोस्त नहीं बनते मेरे,
1: अरे हम आपके दोस्त हैं ना, रेनबो वाले हमेशा आपके दोस्त हैं, हमारा कनेक्शन जो होता है वो हार्ट टू हार्ट होता है, दिल से दिल तक। तो ऐसे ही लोग चाहिए जो खुददार हो, सच बोले। अब चलिए अगला गीत आप सभी के लिए अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: ऐसा है दोस्तों कि वादा खिलाफी मैं बिल्कुल नहीं करती, और जैसा कि अरविंद गिरी ने फोन करके बताया था, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं वो बात आप तक पहुंचा दूं कि इलायची देखने में छोटी सी होती है लेकिन उसकी खुशबू और उसका असर बहुत खास होता है। मैं भी ज्यादा दिखावा नहीं करने में विश्वास रखता हूं, और लेकिन जहां भी रहूं कोशिश करता हूं कि अपने वर्क बिहेवियर से अच्छा इंप्रेशन डालूं। मैं डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करता हूं, इसीलिए कभी कभी लोग मुझे स्ट्रिक्ट भी कहते हैं, लेकिन साथ ही हेल्पिंग नेचर का हूं, सबका ख्याल रखना, जैसे कि इलायची सारी सब्जियों का ख्याल रखती है, और अपने नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना मुझे बहुत पसंद है। और जैसे इलायची हर रेसिपी में अपनी अलग पहचान बना लेती है, वैसे ही मैं भी हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को डालने की कोशिश करता हूं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, फायदेमंद होता है छोटी इलायची, और उसका तासीर भी बहुत ठंडा होता है, और पूजा में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए अरविंद गिरी, आपने बैंगलोर से जितनी बातें बताई उसे मैंने अपने ढंग से कह दिया, पहुंचा दिया, और आप भी सुन रहे होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा ही। चलिए, आपका तो दिन हो गया, बन गया बल्ले बल्ले। अब फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए।
1: ये राकेश क्या मचमच करता है यार, समझ में नहीं आ रहा तेरा घर का पता है यार, धुंधे धुंधे परेशान हो गया।
2: कटिंग गाना है।
1: अरे मैं क्या बोल रहा हूँ,

ऐसा है कि स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 10:56 और फिलहाल समय ज्यादा शेष नहीं बचा है, तो चलते चलते यही कहूंगी कि एक और मसाला है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, वो है आमचूर। और मेरा भी नेचर कुछ कुछ आमचूर जैसा ही है, खट्टा भी है मीठा भी है। और समय समय पर क्या है ना कि जैसी स्थिति परिस्थिति होती है वैसे अलग अलग स्वभाव

में हम लोग भी ढल जाते हैं, और समय के साथ हर स्थिति परिस्थिति में ढल जाना भी बहुत ज़रूरी होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी के साथ आप सभी को यही कहूँगी कि आप सब जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, और आप सभी श्रोताओं के लिए ये जो आखिरी गाना है मैं डेडिकेट करती हूँ। फिल्म सुल्तान से इस गीत को ली हूँ, नेहा वसीन की आवाज़ में इस गीत को सुनेंगे आप, और इरशाद कामिल ने कलमबद्ध किया है, संगीतबद्ध किया है विशाल अंत शेखर ने, और इसी के साथ सुलक्षणा कहेगी टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए, आपका दिन मंगलमय हो।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: बहुत बहुत स्वागत आप सबका। नमस्कार। 3:03 फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में, एकदम सही समय। और ये समय एकदम बढ़िया है। और किस कार्यक्रम के इंतजार में रहते हैं आप लोग रोजाना इस समय, बताना पड़ेगा।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का 107 FM रेनबो पर।
0: आपकी याददाश्त जो है वो बहुत तेज है, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि रोजाना ही तो हम मिलते हैं। लेकिन आज मैं आई हूँ तकरीबन एक हफ्ते बाद आपसे मिलने, इसलिए लगा कि थोड़ा टेस्ट करूं। और आपने एकदम सही सही गेस किया कि ये जो समय है ये सिनेमा को अलॉटेड समय है। आप सबका पसंदीदा मैटिनी शो तीन का तड़का लेकर हाजिर है चैनिका। मेरे साथ आप लोग रहेंगे शाम के 4 बजे तक। 3:30 बजे से हम सुनेंगे विज्ञापन दादा द्वारा प्रायोजित एक खास कार्यक्रम उमंग, और उससे पहले 3:30 बजे तक, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का ये जो समय है हम बिताएंगे सिनेमा के साथ। सिनेमा जो है हम सबकी माँ, एंटरटेनमेंट के बिना कैसे हमारा जीवन आगे बढ़े, कैसे ये अच्छे से बीते। और एकदम जो सबसे सुपर डुपर हिट जो सोर्स है एंटरटेनमेंट का, वो तो फिल्में ही है ना। तो चलिए चलते हैं इस आज के सफर पर।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स को न केवल ऋण प्रदान करके बल्कि उनके समय का ध्यान रखते हुए उनके समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए भी सशक्त बनाने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक के बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि वो आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित अपने शहर में अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। ऋण की नियमित अदायगी पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी मिलती है इसके अंतर्गत, और साथ ही निर्धारित डिजिटल लेन देन करने पर प्रतिवर्ष 1200 रुपए तक का कैशबैक भी मिलता है और ऋण की अगली किश्त के लिए पात्रता भी मिलती है। आवेदन कैसे आपको करना है, उससे पहले के कौन कौन से चरण हैं आप जानना चाहेंगे, तो रेहड़ी पटरी वालों को आवेदन प्रक्रिया के लिए तैयार करने में मदद के लिए 3 सरल पूर्व आवेदन चरण जो हैं उनकी एक सूची बनाई गई है। तो रेहड़ी पटरी वाले सीधे पीएम स्वनिधि पोर्टल पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऋण आवेदन की आवश्यकताओं को समझना है, ये सुनिश्चित करना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से जुड़ा हो और योजना के नियमों के अनुसार पात्रता स्थिति की भी आप अवश्य ही जांच कर लें, और योजना को संचालित करने वाले विस्तृत दिशा निर्देश पीएम स्वनिधि पोर्टल पर दिए हुए हैं, सूचीबद्ध हैं, ताकि स्ट्रीट वेंडरों और अन्य हितधारकों जैसे राज्य शहरी निकाय और ऋणदाताओं को योजना के लाभार्थियों तक का जो लाभ पहुंचाना है वो प्रवाह सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। ये योजना 24 मार्च 2020 या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। प्यारे श्रोताओं, आज हमने परियोजना प्रस्तुति में बात की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के बारे में।
1: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

जारी है तीन का तड़का, चैनिका है आपके साथ ओनली ऑन एफएम रेनबो कोलकाता। और आने वाले शुक्रवार की अगर मैं बात करूं तो कुछ बेहद इंटरेस्टिंग फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, बहुत बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। हिंदी फिल्मों की कुछ एक ख़ास फिल्में इस शुक्रवार नहीं आ रही, लेकिन फिर भी दर्शकों के लिए चार नई फिल्मों की बात मैं करना चाहूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आजकल की आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ही फिल्म जो हिंदी में बनी हो वही हिंदी दर्शकों को अपनी तरफ खींचे, क्योंकि अब ये जो दुनिया है ना, ये वसुधैव कुटुम्बकम की एकदम, जैसे कहते हैं कि ना, एकदम मिसाल है ये फिल्मी दुनिया। हॉलीवुड से बॉलीवुड तक, बॉलीवुड से कॉलीवुड, मॉलीवुड टॉलीवुड, जहाँ भी आप जाइए फिल्में जो हैं वो बहुभाषी हो गई हैं, अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ होती हैं। तो इसीलिए हॉलीवुड से क्रिस्टोफर नोलन आए ओडिसी का प्रमोशन करने इंडिया में, और 17 जुलाई को वो फिल्म रिलीज़ भी हो रही है और बम्पर एडवांस बुकिंग हुई है। वैसे भी नोलन, मैं क्या ही कहूँ उनके बारे में, जो उनकी फिल्में पसंद करते हैं वो जानते हैं, अलग ही लीग के वो फिल्म निर्माता है, निर्देशक हैं। तो वो फैंस के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था मुंबई में, तो उसमें आप यहाँ आए और क्रिस्टोफर नोलन के साथ आए मैट डेमन और साथ ही अपने स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड भी आए, क्योंकि ओडिसी में, द ओडिसी में वो भी नज़र आने वाले हैं। और इस फिल्म के अलावा इस शुक्रवार को पौराणिक कथा पर बनी एनिमेशन फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ भी रिलीज़ हो रही है, और नरसिम्हा जो फिल्म आई थी महावतार नरसिम्हा, इतनी बम्पर फिल्म ने जो है वो इनकम की, कमाई की, सफल रही कि अब महाप्रभु जगन्नाथ से उम्मीदें बढ़ गई हैं कि ये फिल्म कैसी रहेगी। और दूसरी ओर GDN लेकर आ रहे हैं माधवन, इस फिल्म को लेकर भी काफ़ी दिलचस्पी बनी हुई है। देश के मशहूर आविष्कारक GD नायडू पर ये एक बायोपिक है जिसमें हम माधवन को देखेंगे मुख्य भूमिका में। और इसके अलावा एक हिंदी साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर आ रही है जिसका नाम है रहूं मैं तेरे रूबरू, वो भी रिलीज होगी आने वाले शुक्रवार यानी 17 जुलाई को। तो देखिए फिल्मों की जो लत है वो तो आपको छोड़ने नहीं वाली।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: FM रेनबो कोलकाता पर चैनिका के साथ आप सुन रहे हैं सिनेमा की बातें, ओनली ऑन तीन का तड़का।

धमाल 4 रिलीज हो चुकी है और इसमें जो फैंस हैं वो दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक को देखकर भावुक हो गए। मेकर्स ने CGI और AI की मदद से उनका बाटा भाई वाला जो किरदार है वो बनाया और इसके अलावा उन्होंने दर्शकों को और भी सरप्राइजेस दिए हैं इस फिल्म में। धमाल 5 की भी झलक दिखाई है और धमाल फ्रेंचाइजी की जो चौथी फिल्म है धमाल 4 ये 10 जुलाई को थिएटर्स में लगी और फिल्म की एकदम शुरुआत में ही सतीश कौशिक नजर आ रहे हैं और उन्हें देखकर सच में सब इमोशनल हो गए। और ये जो किरदार है बाटा भाई का ये डबल धमाल फिल्म में उन्होंने निभाया था और इस किरदार को निभाते हुए उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। जिस तरह अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए अपने ज़बरदस्त अभिनय के लिए वो जाने जाते थे आज भी हमारे दिलों में उनकी जगह वैसे ही बरकरार है। और एक और यहाँ पे फैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगी कि उनकी कई फिल्में उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी जिनमें किसी का भाई किसी की जान, गन्स एंड गुलाब्स, कागज़ 2 और इमरजेंसी जैसे नाम शामिल हैं। समय जो है वो धीरे धीरे अपनी समाप्ति के कगार पर है। एक और आपको एकदम ताबड़तोड़ खबर देना चाहूंगी वो ये कि अपकमिंग फिल्म तुम्बाड़ 2 को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के तुम्बाड़ 2 से जुड़ने की खबर तो पहले ही बहुत अधिक चर्चे में थी। अब एक और बड़ी कास्टिंग का ऐलान हुआ है वो ये कि आलिया भट्ट भी अब इस मच अवेटेड सीक्वल का हिस्सा बन गई है ऐसा कहा जा रहा है और वो फिल्म एक अहम किरदार में हमें नजर आएंगी। ये एक अलग जॉनर होगा आलिया भट्ट के लिए, है ना। हॉरर अभी तक मुझे ध्यान में नहीं कि उन्होंने ट्राई किया है या नहीं। वैसे एकदम कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा की अदाकारा हैं वो, अलग अलग किस्म की फिल्में भी करती हैं तो ये भी मुझे लग रहा है कि बस एक नया उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस तो होगा ही, ऑडियंस भी चाहेगी उनको देखने के लिए, बरकरार रहेगी इस फिल्म में। और अब कार्यक्रम के एकदम अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। आज के 3 का तड़का का ये अंतिम गीत मैं छोड़े जा रही हूँ आपके लिए और इस गीत के ठीक बाद हम चले जाएंगे एक खास कार्यक्रम की तरफ। विज्ञापन दाता द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 3:30 पर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओं, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओं, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं
2: जी।
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
2: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
3: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
3: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
3: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद।
6: धन्यवाद सर।
4: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
7: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
7: आह, क्या बात है
8: मैम।
7: हाँ बेटी,
8: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
7: बिल्कुल कहा।
8: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
7: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
8: जी, पहाड़ी।
4: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
7: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
7: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
7: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
7: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।

0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
1: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
3: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
4: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
1: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
3: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
4: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: हाँ, जी मैम।
5: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
2: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
3: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
2: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
2: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
2: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
2: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
0: जी।
2: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
4: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
4: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।

0: धन्यवाद
1: धन्यवाद सर
2: धन्यवाद मैम।
3: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
3: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
4: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
3: जंगल के साथी।
5: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
6: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो।

0: सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश, लंबे

0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: daddy. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना? क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
3: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
3: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
3: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर?
3: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
3: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
3: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम। मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
3: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
6: जगबंधु,
5: चेतना
6: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
5: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग।

आप सुन रहे हैं 107 आकाशवाणी एफएम रेनबो कोलकाता, और अभी फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय 4:01 शेष है और आप लोग 4 बजे सुन सकते हैं न्यूज़ हाइलाइट्स, और उसके बाद एक बेहद रोचक कार्यक्रम आपको इंतज़ार कर रहा है। इसलिए आप लोग हमें छोड़कर कहीं भी ना जाएं, बने रहें, सुनते रहें 107 रेनबो कोलकाता।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: 107 FM Rainbow, Shat Shure Sharadi.

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: प्यार भरे नगमे,

भरे नगमे। तो आज चलिए पता लगाते हैं कि ये प्यार आखिर है क्या। टीस है मिठास भी, संतोष है तो प्यास भी, खुशी का और गम का एहसास भी। यानी टीस भी है, मिठास भी है, संतोष भी है, लेकिन प्यास भी है, खुशी भी है और साथ में गम का एहसास भी। यानी इतनी ज़्यादा विरोधाभासी जो फीलिंग्स हैं, या जिस तरह हमारे अंदर ये जो भावनाओं का जो समुद्र है, सागर है, ये उमड़ता है, ये कितने अलग अलग तरह की इमोशंस को जन्म देता है। यही है प्यार, जिंदगी है प्यार। और जिंदगी जिस तरह से हम हर एक पड़ाव पर पहुंचते हैं, फिर दूसरे पड़ाव पर जाने की तैयारी में रहते हैं, ये जो प्यार है ना, ये भी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए अपने रूप को, रंग को बदलता जाता है। लेकिन वो जो कोर फीलिंग होती है, कोर फीलिंग कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का जो कोर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज क्यों ना हम प्यार से जुड़ी इन्हीं बातों की कुछ यहाँ पर जिक्र करें, आपके साथ में बांटूं वो चीजें जो प्यार को दरअसल प्यार बनाती हैं। और साथ में है ही हमारे ये खूबसूरत से नगमे, प्यार भरे नगमे। आप सुनते हैं हर मंगलवार शाम 7:02 पर छायालोक के अंतर्गत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, चैनिका फिर से हाजिर है आपके साथ लेकर ये खूबसूरत सा कार्यक्रम, बेहतरीन प्यार वाले गीत, लव सॉन्ग्स, हिंदी फिल्मों के आपके लिए लेकर आई हूं मैं।

कितना खूबसूरत सा गीत रानी मलिक ने इस गीत को लिखा था अलबेला फिल्म से, मैंने आपको सुनवाया जतिन ललित के संगीत में और आवाज अलका याग्निक और हरिहरन की थी। सुन रहे हैं आप प्यार भरे नगमे ओनली ऑन छायालोक एफएम रेनबो कोलकाता। 7:16 और 6 सेकंड्स फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय। और प्यार शायद है नाम किसका किसका किसका कुछ वो जो कोर एलिमेंट्स की बात में कर रही थी उनमें सामने वाले की खुशी और उसकी सेफ्टी की परवाह करना, वो सलामत है या नहीं, वो हैप्पी है या नहीं, सिक्योर फील करता है या नहीं, इसकी अगर परवाह करते हैं तो वो भी तो प्यार का ही एक अंश है, एक रूप है। और किसी को अगर हम प्यार करते हैं तो उसकी खामियों के साथ उसको चाहना, उसकी खामियों के साथ उसको एक्सेप्ट करना, ये भी

गुस्सा जो कभी भी किसी के भी कुछ भी कहने से टस से मस ना हो, और कभी कभी सामने वाले की खुशी के लिए अपनी जिद को छोड़ देना, हार मान लेना। तो ये जो चार चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये हो सकती हैं एक अच्छे से खूबसूरत से रिश्ते की जड़ या कोर एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशनशिप, जो प्यार मोहब्बत है। लेकिन यहाँ प्यार केवल वो रोमांटिक वाला प्यार नहीं, हर एक रिश्ते के बेस में शायद ये जो बातें हैं ये एप्लीकेबल हैं। आपको क्या लगता है? ये अगला गाना सुनते सुनते आप सोचिए। आप सबके लिए अगला गीत मैं लेकर आई हूँ नदीम श्रवण के म्यूजिक में, एक बेहतरीन फिल्म जो डेब्यू फिल्म थी बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की, बरसात का ये गीत समीर ने लिखा था, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ आप सबके लिए। चलिए थोड़ा नॉस्टैल हो जाए।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: छायालोक पर प्यार भरे नगमे लेकर आज जैनिका आई है। और आपने जो गीत थोड़ी देर पहले सुना वो था दिल है कि मानता नहीं का टाइटल ट्रैक। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा था और संगीतकार नदीम श्रवण थे। अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज हमने सुनी और सच में ये जो वो दौर था ना, सच में सुनहरा दौर था। और इस तरह के जो प्यार भरे गीतों की हम बात करते हैं, कोई अगर प्रोग्राम हम ऐसा बनाएं जहाँ पर हम गीत

चुनकर लाए प्यार वाले गाने, तो 90 के दशक के गीत वहाँ होने ही चाहिए, या पूरा का पूरा कह सकते हैं एक पूरा कार्यक्रम बन जाए, एक से अधिक बार प्रस्तुति हम आपको कर दें, बस 90 के गीत ही जो हैं वो महफिल सजा सकते हैं, इतने खूबसूरत गाने, प्यार भरे गाने। वैसे ही किसी भी रिश्ते में बैलेंस का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। जैसे मसलन प्यार में हम चाहते हैं परवाह, लेकिन कभी कभी ये परवाह भी बोझ हो जाए, जब ये परवाह हमें ज्यादा हद से ज्यादा मिल जाए तब ये बोझ हो जाए। और कब ये परवाह जो है वो बोझ लगने लगती है, कभी सोचा है क्या? दरअसल वो आजकल का एक बड़ा ही पॉपुलर सा टर्म है, वो उसको कहते हैं हम स्पेस देना। वैसे आजकल के दौर की ये बात नहीं, समझ लीजिए 10-15 साल पहले से ही ये टर्म धीरे धीरे धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था, लोकप्रिय हो रहा था। तो ये जो स्पेस देने वाली बात है ना, इसको हम हद से ज़्यादा परवाह देने की बात से जोड़ सकते हैं। कैसे ये दोनों बातें इकट्ठा हो सकती हैं, स्पेस कैसे देना है, ये होती क्या चीज़ है, करेंगे इस पर बातें। लेकिन उससे पहले एक बेहद खूबसूरत सा गीत जहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस की कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम सीधे तौर पर यहाँ पर सीधा सीधा इजहार है। अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़, राजू बन गया जेंटलमैन। और आवाज़ तो मैंने बताई, संगीतकार का नाम भी बताना चाहूंगी, जतिन ललित संगीतकार, और गीत लिखा था मदन पाल ने। तो चलिए सुनते हैं राजू बन गया जेंटलमैन का ये खूबसूरत सदाबहार गीत।

भरे नगमे। 7:40 और 18 सेकंड्स फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय आप सुन रहे हैं छाया लोक चैनिका के साथ मंगलवार की शाम, इसलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्यार भरे नगमे। तो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले स्पेस की, तो ये स्पेस आखिर होती क्या चीज है भाई, किस चिड़िया का नाम है? अपने साथ अगर आप मी टाइम बिता पाते हैं किसी भी एक रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है वही स्पेस है ना, जहाँ आप कुछ समय अकेले सुकून से बैठकर केवल अपने साथ बिता सकते हैं, जिससे आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, जो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने में मदद करती है, आगे बढ़ने में हेल्प होती है आपकी। तो ये आपका मी टाइम है, बहुत स्पेशल सा टाइम है। तो इससे जो आपके चाहने वाले हैं उनको इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए, और वो अगर इनसिक्योर फील नहीं करते तो यही है वो स्पेस जो हर एक रिश्ते में ऑक्सीजन की तरह काम करेगा, नई ऊर्जा हर पल उस रिश्ते में ये भरता रहेगा। तो स्पेस की सच में सबको जरूरत है, और कितना कहां किसे देना है ये आपस की बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और अभी यहां पर भी मैंने एक स्पेस क्रिएट किया गानों के साथ, आपका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा मैंने मेंटेन किया अपनी बकबक के माध्यम से, और वो स्पेस अब घटाते हैं फिर और सुनते हैं एक और नगमा प्यार भरा आप सबके लिए। एक और गाना कुमार शानू की आवाज एक दफा

आप फिर से संजीवनी है इस बार उनके साथ, और फिल्म का नाम, ये भी बड़ी नॉस्टैल्जिया वाली फिल्म थी कसम से, करीब, जो शायद बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी नहीं चल पाई थी, लेकिन गाने क्या कमाल के गाने थे। अनु मलिक ने संगीत दिया था और गीतकार थे राहत इंदौरी। चलिए सुनते हैं ये गाना, ओनली ऑन FM रेनबो कोलकाता।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

هر نغمه. तो भैया ये निष्कर्ष है कि परवाह कहीं बोझ ना बन जाए और स्पेस जो है वो दिया जाए लिया जाए, लेकिन अपनी खुशी का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है हर एक रिश्ते में कि सैक्रिफाइस या त्याग जो है वो सच में ज़रूरी है रिश्ते को हेल्थी बनाए रखने के लिए, लेकिन अपनी इच्छाओं को और अपनी ज़रूरतों को भी तवज्जो देनी चाहिए। यानी सेल्फ लव जो है वो किसी भी लव से कम नहीं है, इसलिए खुद से प्यार करते रहिए, तभी तो आप प्यार बांट पाएंगे। और ये जो बैलेंस है ना, इस फाइन बैलेंस को मुझे भी अभी यहाँ फिलहाल बनाना है और आपसे टाटा बाय बाय कहते हुए चले जाना है, क्योंकि इस दूसरे घंटे में 8:02 पर आपसे मिलने आएगी देविका लेकर छायलों का दूसरा भाग। चैनिका को आप अब जाने की इजाज़त दे दें, क्योंकि दोबारा मुझे लौट कर आना होगा ना किसी दिन, उसके लिए जाना लाजमी है। तो ये है बैलेंस हमारे यहाँ का जो अभी बन जाएगा फिलहाल इस अंतिम गाने के साथ जो मैं आपको सुनवाऊंगी। फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है से, और आवाज़ अलका याग्निक कुमार शानू की है, संगीतकार जतिन ललित आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था। और दामिनी का गीत हमने सुना अभी अभी, संगीतकार नदीम श्रवण थे, समीर ने गीत को लिखा था, साधना सरगम और कुमार शानू की आवाज़ थी। तो चलिए अंतिम गाना प्यार भरे नगमे कार्यक्रम का चयनिका की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सुनते रहें FM Rainbow कोलकाता।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

दोस्तों सतरंगी रे इस गीत के साथ आप सभी का स्वागत है 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यार्स पर, जहां पर मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका आ गई हूं लेकर आप सभी का प्रिय छायालोक। और दोस्तों सतरंगी रे इस गीत को आप सुन रहे थे सोनू निगम के साथ कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में, फिल्म का नाम दिल से। ऐसे ही बेहतरीन तराने हैं आज मेरे साथ, तो दोस्तों आप सभी के लिए एक के बाद एक बेहतरीन तरानों का नजराना। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत।

वेल फ्रेंड्स, तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना, ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम रंगीला, और आपको बता दें कि रंगीला फिल्म में ये जो खूबसूरत महिला नजर आई थी ऑन स्क्रीन, वो कौन थी? उर्मिला मातोंडकर जी। हाँ, आप सभी को याद होगा कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आई थी। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा, मतलब अपने अपने टाइम के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे ऐसे फिल्म्स की हैं जो थोड़ी बोल्ड थी। जैसे इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो ड्रेसेस हैं वो भी ट्राई किए, बहुत ही स्टाइलिश ट्रेंडी ड्रेसेस जो हैं वो दिखती, उन ड्रेसेस में वो दिखती हैं। तो फिलहाल आप सभी को बता दें कि उर्मिला के बारे में तो हो गई बातें, आपको बता दें कि ये गीत था आशा भोसले की आवाज़ में, और आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना इस तराने को फिल्म रंगीला से। अगले तराने को सुनने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष जो सूचना हमारे तक पहुँची है, हम तक पहुँची है, उसके बारे में बताना चाहूँगी कि आज 8:17, वैसे तो 8:17 हो गए हैं, लेकिन मौसम विभाग से अभी हमारे पास एक मेल आया, और उसके अंतर्गत वो कहना चाह रहे हैं कि 8:17 से अगले 2-3 घंटों के दौरान नदिया जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है। तो ऐसे में आप सभी को सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है ऐसे मौसम में अपने आप को रखना सुरक्षित। फिलहाल आप सभी के लिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

स्टूडियो की घड़ी में 8:37 और बेहतरीन तरानों के साथ समय का पता चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में कई बेहतरीन तरानों का एक साथ, जो हम एक तरह से कह सकते हैं जलसा, सुन सकते हैं इस गीत में। फिलहाल अगला जो गीत आप सुनेंगे, इस गीत को हमने लिया है फिल्म अकेले हम अकेले तुम से, उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की आवाज़।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

वेल फ्रेंड्स, श्रेया घोषाल की आवाज़ में आपने सुनी इस तराने को, और ये तराना था फिल्म देवदास से। लेकिन अगला गीत आशा भोसले के साथ उदित नारायण की आवाज़ में, अजनबी मुझे इतना बता। दोस्तों, फिल्म का नाम प्यार तो होना ही था।

वेल फ्रेंड्स, इन खूबसूरत तरानों को सुनते सुनते एक घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो इन रोमांटिक तरानों के सिलसिले को जारी रखते हुए अलका याग्निक के साथ कुमार सानू की आवाज में अंतिम गीत आप सभी के लिए। फिल्म का नाम राजू बन गया जेंटलमैन। आइए सुनते हैं इस गीत को। दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी वादे के साथ। गुड नाइट, शब खैर।

में ऐसे है बसी, ना ही बहते हैं आंसू ना ही आती है हंसी। क्यों तू गई और कहां पे गई ये सब मुझको नहीं पता, मुझको तो बस कोई यही पता।